उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो

उजाला रेडियो डे अबे प्लस पे देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेर इन्फॉर्मेशन ऑफ उजाला पिंडनेल उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारी ओर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तुझ

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टरडम और बाकी नीदरलैंड से लड़कन राम अवतार और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 78 साल की आयु में अख्तन सीफन तखियार औत स्वर्गीय श्री सत्यनारायण प्रसाद की पत्नी लड़कन सौरसिन, भाइयों अंजनी, गीता, अनिल और भारती राम अवतार की माँ, सभी दामाद और पतों के सास और सभी लड़कन के नानी आजी, पर नानी और पर आजी, आम्स्टरडम ज़ुइटोस द द्रेख्त की रहने वाली विधवा कमलावती राम अवतार अवतार की मृत्यु आम्स्टरडम के AMC हॉस्पिटल में हो गई है। कमला के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। पहले फ्रीसलांत लेमर के निवासी थी, उससे पहले सूरीनाम मेयर जोरख में रहती थी। आम्स्टरडम और बाकी नीदरलैंड से लड़कन राम अवतार और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 78 साल की आयु में अख्तन ज़ीफ़न तक यार और स्वर्गीय श्री सत्यनारायण प्रसाद की पत्नी लड़कन सौरसिन, भाइयों अंजनी, गीता, अनिल और भारती राम अवतार की माँ, सभी दामाद और पतों के सास और सभी लड़कन के नानी आजी, पर नानी और पर आजी, आम्स्टरडम ज़ुइटोस द द्रेख्त की रहने वाली विधवा कमलावती राम अवतार अवतार की मृत्यु AMC हॉस्पिटल में हो गई है। कमला के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे और पहले फ्रीसलांत लेमर की निवासी थी और उससे पहले सूरीनाम मेयर जोरख में रहती थी। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज इतवार के दिन में 1 बजे से 2 बजे तक फमेदक फन 1 to 2 uur उत्फार्ट सेंट्रम वेस्ट खार्ड के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 आम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बुध के दिन में 11:30 बजे वोंसदाख आंस्टांद हाल्फ 12 किए जाएंगे। वेस्ट खार्ड क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 आम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतवार्त फ्रजोरखिंग परिवार राम अवतार और बाकी परिवारों के दुख में शामिल है।

0: ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में। जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं।

ताली ताग धुम ताग ताली ताग जमी ताग दाला आम को ताग धुगी ताग ताजी के नंद ताग नाक ताग धुम ताग नाक नाक धुम ताग नाक नाक धुम ताग नाक नाक जम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को कुतारी ता कुतारी के नंद ताली जम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को कुतारी ता कुतारी के नंद जम तारी जग तारी ताग नाक ताज जन्ने ताज जन्ने ताज जन्ने ताज जम तारी जग तारी जाने जाने

जी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टर्डम से परिवार रामदीन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए सोमवार 17 तारीख को 89 साल के आयु में नेखनन तख्त अख्तियार और स्वर्गीय पत्नी कृष्णा कुमारी रामदीन पिल्टो का पति लड़कन रिकार्डो शोरली इवान हैंक और तेलमा रामदीन और परिवार के पिता अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान अल्बर्ट योहान सिउदत रामदीन के मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। बर्थ के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम कमोवेन रेंस डोरप बाकी का रहने वाला था पहले, जहां दुकान रामदीन का मालिक भी था। अम्स्टर्डम से लड़कन रामदीन और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए सोमवार 17 तारीख अगस्त को 89 साल की आयु में नेखनन तख्त यार औत स्वर्गीय पत्नी कृष्णा कुमारी रामदीन पिल्टो का पति लड़कन रिकार्डो शोरली इवान हैंक और तेलमा रामदीन के पिता अम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान अल्बर्ट योहान सिउदत रामदीन की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। बर्थ के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे कल सोमवार के रात में 6:30 बजे से 7:30 बजे तक। Morgenavond van 6:30 tot 7:30 Ola Zuid ke Moerdalay Fretruske straat 91 Amsterdam Zuid me Arthi ke dah kriya aane wale mangalwar ke din me 1:30 baje Dinsdag aanstaande 1:30 kiye jayenge Westgaarde crematorium ook meerweg 275 Amsterdam Oostdorp me aur jankari ke liye tar ka number hai 06 28 21 91 71 06 28 41 91 71। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार रामदीन के दुख में शामिल है।

और मृत्यु समाचार सुनिए। अम्स्टर्डम से परिवार कल्लू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 78 साल की आयु में अख्तन ज़ईफ अंतखियार और श्रीमती निर्मला कल्लू का पति सुनीता और गायत्री कल्लू के पिता लड़कन के नाना अम्स्टर्डम न्यू स्लोटन का रहने वाला श्रीमान मनीराम कल्लू के मृत्यु अम्स्टर्डम के ओंज लीफोफ्राउ वास्ट हाउस वेस्ट में हो गई है। मन्नी के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम इलाका कोमवेन का रहने वाला जो पहले था। अम्स्टर्डम से परिवार कल्लू बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 78 साल की आयु में अख्तन ज़ईफ अंतखियार और श्रीमती निर्मला कल्लू का पति सुनीता और गायत्री कल्लू के पिता लड़कन के नाना अम्स्टर्डम ने उस्लोतन का रहने वाला श्रीमान मनीराम कल्लू की मृत्यु अम्स्टर्डम के ओंज लीफोफ्राउ वास्ट हाउस वेस्ट में हो गई है। मन्नी के नाम से लोग पहचानते पुकारते थे। पहले सूरीनाम इलाका कोमवेन का रहने वाला जो था। अर्थी से विदाई को आप ले सकेंगे आने वाले बीफे के रात में 7 से 8 तक डोंडरदाग आवंद फन 7 tot 8 uur uitvaartcentrum Westgaarde के मुर्दालय ओक मेरवेग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार के दिन में 4 फ्राइडे आंस्टांद 4 uur किए जाएंगे वेस्टगार्ड क्रिमेटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर उइतफार्त फुरजोरखिंग समस्त परिवार कल्लू के दुख में शामिल है।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

अग्नि संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

कुदरत का करिश्मा एक दूसरे से मिलना, दुनिया की सरसमी पर किस्मत को आरसमाना, ये प्रेम का जहां है हर कृष्ण भूल जाना, आपस के मोहब्बत ये धर्म है सिखाता।

तकरीबन 9 मिनट बीते हो चुका है 3:00 नहीं खन मिनट 9:03 हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां जन्मदिन सालगिरह विवाह शादी बहो आप को हार्दिक से बधाई आओ तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज की जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना अल्लाह से दुआ है आप की ताकत आओ तंदुरुस्ती के लिए। वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा यहां से आप लोग सुनेंगे शाम में 5 बजे तक। मैं हूं सुभाष और जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है वहां तक हम आप सभी को आज इतवार का शाम को बहुत ही प्यार के साथ स्वागत कर रहा हूं। वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा। अगर आप लोग हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहेंगे तो व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 9203630008 पर 9203630008 पर। चलिए हमारे प्यारे सुनो लो पहला बैठ गाना प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे वैसे इसका प्रोग्राम में तो गाने वाले होंगे आलिस रामबली के आवाज में आप लोग सुनेंगे।

वल शाबाश शाबाश हरी हरी बोल। औसरों से खूबसूरत सा गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने आलिस रामबली के आवाज में, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम। एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो इस गाना को मांग करने वाला है अलमेर में, जहां पर भाई मनोज मुंगार प्रोग्राम को बैठकर सुने तो जयंत महावीर।

0: दोनों मन।
1: और चलिए यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे एक और ऐसा गीत जो प्रोग्राम में हम ला रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वालों। और देखा जाए अगर आप लोग हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहेंगे तो हमारा व्हाट्सएप का फोन का नंबर है 9 3 9 3 9 9 9 पर।

Naturo, Naturo na, आई तरह से Raymond N. Sivam Rajaram. और अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो हम सुनम सहित उसमें भाई रॉबी रोजन प्रोग्राम को बैठ करके सुने।

वेल हाफिज खुदा तुम्हारा, आयुषरा से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। और देखा जाए तो रामोन कुच बिहारी भी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं, तो ये गाना तुम्हारे नाम, यंग टाइगर ऑफ बैठ गाना विशाल हीरा।

हमारे रनिया सच बता दे बतिया, और इस तरह से द यंग टाइगर ऑफ बैट गनर विशाल हीरा की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। और देखा जाए उस दौर आकर में जहां पर इस वक्त भाई हैंग कॉपी

और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने जय हिंद महावीर की आवाज में। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी की आवाज में। और इस गाना को मांग करने वाली फैंस फोल्डर में एमी के लिए गाना पेश है।

वेल शाबाश शाबाश जो इस तरह से द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने। अब की बार गाना को मांग करने वाली है दीमन शेयर के रहने वाली फौसिया के लिए गाना पेश है

हमारे प्यारे सुनने वालों, युवा जन रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। रिक्लाम की बात ना, ब्रेक बैनक विद रुख यार।

अगर आपके घर पे जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूड योर ईमेल नर info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा, दूसरा भाग और आखिरी भाग बैठक गाना जो आप लोग सुनेंगे। वेल, अगर आप लोग बैठ करके भोजन करते होंगे तो स्वादिष्ट भोजन कीजिए, बेंच वालों तो एट स्मैक लग, चाहे पकावत होइए, चाहे घर के काम करत होइए, या तो तिकरी तिकरी तिकरी तिकरी तिकरी आई बॉय कपड़ा तिरकी करत होइए, मोइसे तिरकी करिए, अन्ना तो लोग लाइन में बिछाए के बैठाइए। और देखा जाए लाइसफेन शहर में जहां पर इस वक्त सानू भी प्रोग्राम को बैठकर सुने, तो ये गाना तुम्हारे नाम।

0: बोलो सोना।
1: बोलो रे सोना, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम तेरन हाउस में भी सुनीता प्रोग्राम को बैठकर सुने, तो ये गाना तुम्हारे नाम
2: से कि ले गए पवन उड़ाए यारी बिछुड़े यार से, ये दुख हमसे सहा न जाए।

वल शाबाश शाबाश रतिया सपना दिखाए पिया हमको रात की सपना एंड अब की बार हम सलाम साई तो उसमें हमारे मामी खैरदा जी प्रोग्राम को बैठकर सुने

0: शाबाश शाबाश। और इस तरह से बिजनवती चैतु जी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो बैनी भी प्रोग्राम को बैठ के सुने हम शरम सही। तो उसमें बैनी राम शरण
1: कैसे बनैले सजनी, कैसे बनैले, कैसे बनैले सजनी, कैसे बनैले।

वाल कैसे बनेले बिना तेल के अपने बन के अपने मन के तो खाई को बनेले वाल बाकी लेकर है अलमेरी शहर में माला मुंगार भी प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मेरा

वेल शाबाश शाबाश यार, कौन अलबेली जरा पानी भरे। आई बोल युवा उजाला रेडियो एंड एक दूषी एकदम

जीवाणु जल रेडियो का प्रोग्राम वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा जो आप लोग सुन रहे आई बोई चलन दे हियर वी गो जीवाणु जल रेडियो

मैं हूं एक पागल प्रेमी, मेरा दर्द ना कोई जाना। आई बोय, ऐसे ऐसे हो गए है। मैं हूं एक पागल प्रेमी, मेरा दर्द ना कोई जाना। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो कल गए अनिल भाई, भाई अनिल प्रोग्राम को सुने हैं अल्फासिया के साथ। लेकिन अनिल के नाचत नाचत ओकर नारा, ओकर नारा उखड़ गए यार, ओकर नारा उखड़ गए। तो भाई ये गाना के साथ तोर नरवा बढ़ गई, सही करवे तो।

0: आई बो ये कस के सिवायो और हमारे प्यारे सुनने वालों यहाँ तक आप लोग सुने प्रोग्राम वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा और आशा है कि आज का प्रोग्राम भी आप सभी सुनने वालों को पसंद आए होंगे। ये बैठक गाना जो आप सभी के लिए हमने बनाए आप सभी सुनने वालों को पसंद आए होंगे। हमारा साथ देने के लिए और हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुक्रिया। आने वाले सप्ताह इतवार को फिर हम आप लोग से मिल लेंगे।
1: ले ले लंदी लाला, गुले ले लंदी लाल।
0: आप लोग अपना इतवार का शाम और रात्रि मोई से बिताइयो, मोई से रहियो, मोई से खाइयो, मोई से पियो। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम नमस्कार।

ब्रांस एफएम में अगर आप आएंगे पूरा परिवार के साथ आएंगे तो बच्चों के वास्ते फॉर किंडरगार्टन टॉट 1 मीटर ग्रेटस आप अंदर जा सकते हैं। आ रहे हैं आपके लिए द बैंड का गायक स्टीवन केदार।

मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा लड़ी पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश Formaar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

जी के साथ गमी है पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टरडम से परिवार रामदीन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए सोमवार 17 तारीख को 89 साल के आयु में निखनन तख्त यार और स्वर्गीय पत्नी कृष्णा कुमारी रामदीन पिल्टो का पति लड़कन रिकार्डो शोरली इवान हैंक और तेलमा रामदीन और परिवार के पिता आम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान अल्बर्ट योहान सिउदत रामदीन के मृत्यु आम्स्टरडम में हो गई है। बर्थ के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम कॉमोवेन रेंसडॉर्प बाकी का रहने वाला था पहले, जहां दुकान रामदीन का मालिक भी था। आम्स्टरडम से लड़कन रामदीन और पदो शोरली इवान हैंक और तेलमा रामदीन और परिवार के पिता आम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान अल्बर्ट योहान सिउदत रामदीन के मृत्यु आम्स्टरडम में हो गई है। बर्थ के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम कॉमोवेन रेंसडॉर्प बाकी का रहने वाला था पहले, जहां दुकान रामदीन का मालिक भी था। आम्स्टरडम से लड़कन

अगस्त को 89 साल की आयु में 89 यार औत स्वर्गीय पत्नी कृष्ण कुमारी रामदीन पिल्टो का पति लड़कन रिकार्डो शोरली इवन हैंक और तेलमा रामदीन के पिता अम्स्टरडम का रहने वाला श्रीमान अल्बर्ट योहान सेउदत रामदीन की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। बर्त के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे कल सोमवार के रात में 6:30 बजे से 7:30 बजे तक। मोरखनाफन फन हालफ सीफन तो थलफ ओला जैत के मुर्दालय फ्रेतरुस्कस रात 91 अम्स्टरडम जैत में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार के दिन में 1:30 बजे दिन दखास्तान हालफ त्वे किए जाएंगे वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवैख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06 28 41 91 71 06 28 41 91 71। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार रामदीन के दुख में शामिल है।

0: WNWR.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een glasplaat op de A32 terechtgekomen vanuit Heerenveen naar Leeuwarden. En dat is bij Grauw. De weg is daar dicht tot 6 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Drachten over de A7 en de N31. De grenscontrole op de A76 vanuit Geleen naar Aken veroorzaakt momenteel een kwartier vertraging. Rijdt langzaam vanaf knooppunt Kunderberg over 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujan Radio. देश भर में सुनाई देता है फिया डीएबी प्लस तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो डीएबी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हार्ट द बेस्ट उजाला रेडियो तुझे लगे ना
3: नजरिया आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन यू आर

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू।

नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहीद गुलजार। यह है उजाला रेडियो का पैगाम और कुछ मिले जुले संगीत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो एक घंटे लगातार मिक्स मक्स सॉन्ग्स। हमारे सभी श्रोताओं को एक बहुत ही शुभ दिन मुबारक दिन अर्ज है स्टूडियो से, और ये सिलेक्शन अर्ज है घूंघट में चांद निकला, द टाइगर ऑफ बंगाल, कुमार सानू और कविता कृष्णा मूर्ति।

फिल्म खूबसूरत का सिलेक्शन आपने भी सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए, लगातार नॉन स्टॉप म्यूजिक। जिस हालात में आप भी हमें सुन रहे हैं, आप प्रोग्राम को सुनते रहना और सुनते ही जाना, ऐसे में हम आपको अब एक नगमा सुनाने वाले हैं। फिल्म का नाम रांझना, संगीतकार है A.R. रहमान, शिराज उप्पल और जसविंदर सिंह की आवाज़ में आप सुनिए इसी फिल्म का सिलेक्शन रांझना।

हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे, हम तुम सनम सातो जन्म। शैलेंद्र सिंह की आवाज उजाला रेडियो के जरिए हर एक को एक शुभ दिन, मुबारक दिन अर्ज है स्टूडियो से।

फिल्म का नाम खेल खेल में। शैलेंद्र सिंह की आवाज में आपने भी सुने कि हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, कुछ दिखाई भर, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, इसे हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे यूं ऐसे।

बहुत ही रोमानी सिलेक्शन आपके मध्य में प्रस्तुत किए गए है उजाला रेडियो के माध्यम से। शब्बीर कुमार और द मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया आशा भोसले की आवाज। एक लफ्ज मोहब्बत है जो कहने से डरता हूँ, आई मेरी जिंदगी मैं तुझसे प्यार लव करता हूँ।

The rocking and most sensational leader in broadcasting, you are का पैगाम आप सुन रहे हैं और अब हम आपको सुनाने वाले हैं Murder 3 का selection, यानी कि तीसरा खून. वो तेरी झुकी नजर, शफकत अमानत अली की आवाज़.

मिले जुले संगीत में हम आपको इस बार सुनाने वाले हैं फिल्म दीवाना का नगमा, एक बार फिर से द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू जी की आवाज में। सोचेंगे तुम है प्यार, सोचेंगे तुम है प्यार करे या ना करे सोच के हम बताओ। लीजिए द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू।

स्टेशन है यू आर उजाला रेडियो। मिक्स मार्क सॉन्ग्स में ये नगमा भी आप सुनिए।

द गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया सोनू निगम और साथियों की आवाज में आपने भी नगमा सुने हैं। उजाला रेडियो का पैगाम है, आप प्रोग्राम को सुनते रहना और सुनते ही जाना। और ऐसे में फिल्म जूली का नगमा हम आपको सुनाने वाले हैं, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ।

I love you too. फिल्म का नाम जूली है। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर और हसीनों के पुजारी किशोर दा की आवाज में आपने भी सुने हैं। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, एक नीदरलैंड्स में बोले है डेमेंसी। लीजिए प्रोग्राम में पेश खिदमत है द हार्ट ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश। फिल्म का नाम आंसू और मुस्कान। मोती जैसा रंग अंग, मुकेश जी की आवाज, और स्टेशन है यू आर।

द हार्ट ऑफ मिलियंस, द माइटी मुकेश जी की आवाज में आपने भी यह सिलेक्शन सुने हैं। लुत्फ आप उठाते ही रहना, यू आर का पैगाम में कुछ मिले जुले संगीत मिक्स मार्क सॉन्ग्स आपके मध्य में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। खादिम का नाम है शहीद गुलजार। इस बार सिलेक्शन हम आपको सुनाने वाले हैं आशा जी की आवाज में, फिल्म का नाम द ग्रेट गैम्बलर। दो लफ्जों की है कहानी, लीजिए अर्ज है आशा जी की आवाज़।

0: दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का नाम है, आशा ताई की आवाज में आपने भी सुने हैं। सुनते रहना प्रोग्राम को, सुनते ही जाना।
1: Tot straks, na de commercials.

ये उजाला रेडियो है और यहीं से अब आरंभ किया जा रहा है साप्ताहिक प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया। इस प्रोग्राम में हम आपको गीतों और गजलें सुनाते हैं और जिसे आपको पता है मालूम है तो बातें हम कम करते हैं, इसलिए ताकि प्रोग्राम में जो गीतों और गजलें हम सुना रहे हैं आप उन्हें इत्मीनान से सुने और सुनकर के लुफ्त भी उठा सके। तो आज का प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो है उसमें आपको स्वागत करते हुए और पहली गजल पेश है।

समुंदर में उतर जाने दे, तेरा मुजरिम हूँ मुझे डूब के मर जाने दे। जगजीत सिंह की आवाज में आप सुने।

आखिरी बार तेरे हुस्न को सजदा कर लूं, फिर मैं चला जाऊंगा। अनूप जलोटा जी की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो का प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया है।

0: तराशा हुआ।
1: प्रोग्राम का इस हिस्सा में आखिरी गजल है और इसके बाद रिक्लामे के बाद दूसरा हिस्सा प्रोग्राम का आप जरूर इंतजार कर लेना।

उजाला रेडियो है और यहीं से एक और प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया आप सुनेंगे।

और जगजीत सिंह की आवाज में गजल को आप सुने, वो जो अपना था वो किसी और का क्यों है। और इस प्रोग्राम में जगजीत सिंह फिर हिस्सा

जिंदगी की जहर अपना घर लेकर आ गया। जगजीत सिंह की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो पर, और प्रोग्राम है गीत और गजल की दुनिया।

छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है बताना भी नहीं आता। पंकज उदास की आवाज, उजाला रेडियो है ये। Wilt u een reactie achterlaten? Stuur dan een e-mail naar info@ujala.nl. Ter attentie van Vijay. Wel fijn dat u luistert.

मेहदी हसन की आवाज में आप सुने कि दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिल रुबा है मेरे दिल में जो हूरों से कम नहीं। पंकज उधास एक बार फिर।

मौत से पर्दा किया और कफन तूने तो शर्मिंदा किया। पंकज उदास की आवाज एल्बम नयाब से, उसी एल्बम से एक और गजल पेश है।

कहाँ जाऊँ होता नहीं फैसला, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा। हाँ, आप गीत को गजल को सुने पंकज उदास से, उजाला रेडियो है ये, गीत और गजल की दुनिया। तलत अजीज हिस्सा।

प्यार तुम्हारा भूल तो जाऊं लेकिन प्यार तुम्हारा है। हम ये कहना चाहते थे आपसे कि गजल से अगर आप और मजा लेना चाहें तो ध्यान से सुनना चाहिए, समझने की कोशिश भी करें। बहुत सुंदर शब्दों में गजलें जो है तो लिखे जाते हैं। और हाँ, ये उजाला रेडियो है।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कह

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: एक चीज के लिए एक आदमी अमूल्य हो जाते हैं, जिसकी मोल नहीं, तोड़ मोल नहीं होती। और ये चीज हमेशा खुदा के घर से आता है। वो चीज थी मुकेश की आवाज की टिम्बर, जिसका वो धनी था। वो टिम्बर किसी की आवाज में मुझे और सुनाई नहीं दी।
1: भाई और बहनों, ये है मेरी जिंदगी का पहला गाना।